आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

हाय नमस्कार, दिस इज आर जे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर 90.4 FM। हम सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पी क्यू रंगाचारी तमिलनाडु का रहने वाला था। संस्कृत बनारसी पंडितों की तरह बोलता था और अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों जैसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के जोशीले भाषणकर्ताओं सी और उर्दू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी। वह 10 भाषाएं जानता था और 10 और सीख रहा था। उसने अपना जीवन एक साधारण क्लर्क के रूप में शुरू किया था। आज वह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर विराजमान था। प्रत्येक मामले में मेन मेक निकालने में वह ऐसा सिद्धहस्त था कि उसके शासनकाल में हर फाइल 10 वर्ष तक विभिन्न दफ्तरों और मेज़ों के चक्कर लगाती थी और जब तक उसकी तरक्की न हो जाए फाइल भी आगे तरक्की नहीं कर सकती थी। अपने इसी कानूनी मीन मेक के कारण वह डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा था और अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के स्वप्न देख रहा था। हो जाएगा, पी क्यू रंगाचारी जैसे व्यक्ति कभी नहीं रुक सकते। उनके दफ्तर की सारी फाइलें रुक जाए लेकिन वे स्वयं कभी नहीं रुक सकते। पी क्यू रंगाचारी ने बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ा। कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिखता रहा। आखिर जब सब सुन चुका था तो उसने अपने मित्र ज्वाइंट सेक्रेटरी YZ सुब्रमण्यम को बुलाया, जो उसी की तरह तमिलनाडु का रहने वाला था और 25 भाषाओं, 10 पूंजीपतियों और 2 मंत्रियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पी क्यू रंगाचारी ने कहा, वाइजर सुनो, यह बड़ी कठिन समस्या है। क्या? वाइजर सुब्रमण्यम मेरी ओर बढ़े, ध्यान से देखते हुए बोला, एक धोबी मर गया है और यह उसका गधा हमसे हर्जाना मांगता है। फिर रंगाचारी बोला, कानून की दृष्टि से एक गधा किसी विभाग में प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता और हम उसके प्रार्थना पत्र का कोई नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि गधा इंसान नहीं है और अदालत इंसानों की बात सुनती है, गधों की नहीं। मैंने कहा, बात मेरी घास की नहीं है, आपकी बुद्धि की है। रामू की बीबी और बच्चे भूखे हैं। क्यों? अगर सरकार उस धोबी गार्ड की ठीक तरह से रक्षा करती तो आज वह यूं ना मरता। वाइजर सुब्रमण्यम ने कहा, हाँ पी क्यू, इस बात पर विचार करो। यूं सोचो कि यह प्रार्थना पत्र जिस पर रामू की बीबी का अंगूठा लगवाया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। फिर? पी क्यू बोला, फिर दूसरी बात पर विचार करो। मान लिया कि एक गधा एक धोबी के कुटुंब का सरपरस्त बन सकता है। हमने बड़े बड़े कुटुंबों में इनसे बड़े गधों को सरपरस्त बनते देखा है। यह तो मुझे पढ़ा लिखा गधा मालूम होता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं।

वाई जेड सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर रहिए। एक ब्रेक के बाद हम यहीं पर मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

داستان هيجي. वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM। क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं, वाइजर सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेबर एक्ट की धारा 51 के अनुसार मजदूर वह है जो किसी कारखाने में काम करे। क्या तुम धोबी गार्ड को कारखाना कह सकते हो सुब्रमण्यम? कदापि नहीं रंगाचारी, यह धोबी तो मजदूर हो ही नहीं सकता, इसलिए न इसे हर्जाना मिल सकता है, न प्रोविडेंट फंड, न सहायता स्वरूप कुछ रुपया किसी खाते में से दिया जा सकता है, न कोई मुकदमा खड़ा हो सकता है। तो फिर? रंगाचारी सुब्रमण्यम का मुंह देखने लगा और सुब्रमण्यम रंगाचारी का, और मैं उन दोनों का। एकाएक उन दोनों के मन में एक ही विचार आया और वे प्रसन्नतावश उछल पड़े। मैं भी प्रसन्नता से उछल पड़ा कि अब बेचारे रामू धोबी की फैमिली का कुछ भला हो जाएगा। मगर एक बात विचार करने

की है, रंगाचारी बोला। अगर यह धोबी मजदूर नहीं तो फिर कौन है? इसकी कानूनी हैसियत स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो धोबी प्रतिदिन घाट पर मरते रहेंगे और हमारे लिए विपत्ति खड़ी करते रहेंगे, सुब्रमण्यम बोला। मेरे विचार से इस गधे का प्रार्थना पत्र लेकर एक फाइल चला देनी चाहिए। रंगाचारी ने मेरे हाथ से प्रार्थना पत्र ले लिया। मैंने उसके दोनों हाथ अपने दोनों कानों में लेकर कहा, धन्यवाद रंगाचारी महोदय, हजार बार लाख बार धन्यवाद। आपने एक गरीब धोबी के बीबी बच्चों को मरने से बचा लिया। मैं इस प्रार्थना पत्र का फैसला सुनने का पाऊं? रंगाचारी ने सुब्रमण्यम की ओर देखा। सुब्रमण्यम ने रंगाचारी की ओर देखा। आखिर रंगाचारी बोला, फाइल तो आज ही चलनी शुरू हो जाएगी। तीसरे दर्जे के क्लर्क से पहले पहले दर्जे के क्लर्क तक जाएगी। फिर हर मेज पर इसकी नोटिंग होगी। फर्स्ट क्लर्क से डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट तक और डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट से सुप्रिटेंडेंट तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय देगा। यह राय चलते चलते मेजों पर से गुजरती हुई मेरे पास आएगी। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से फर्स्ट सेक्रेटरी के पास, फर्स्ट सेक्रेटरी से उसे डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या समस्या है, लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ आरजी अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। प्रश्न रामू धोबी के मर जाने का इतना नहीं है, प्रश्न यह है कि धोबी मजदूर हो सकता है या नहीं। संभव है इस संबंध में कॉमर्स मिनिस्ट्री से निर्णय कराने की आवश्यकता पड़े। फिर यह प्रश्न भी है कि अगर धोबी मजदूर है तो मोची मजदूर क्यों नहीं, कुम्हार मजदूर क्यों नहीं। अगर रामू को हर्जाना मिलेगा तो दूसरे भी मांगेंगे। लाखों करोड़ों के लिए स्टेट बैंक कहाँ से हर्जाना लाएगा, इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा। संभव है फिनांस डिपार्टमेंट इस मूल प्रश्न को प्रधानमंत्री के सामने रखे और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस प्रश्न को रखे। संभव है इसी प्रश्न पर हमारे विधान की किसी धारा में कोई परिवर्तन भी हो जाए। रंगाचारी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए मुझसे कहा, मेरे विचार में अगर तुम 10 साल के बाद आओ तो उस समय तक इस फाइल का कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। तब तक रामू के बीबी बच्चे क्या करे। रंगाचारी ने कहा, हम विवश है, कानून के हाथों बिल्कुल विवश है। यो हमारी पूरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। सुब्रमण्यम बोला, मैं समझता हूँ रंगाचारी, समस्या वास्तव में यह नहीं है कि धोबी मजदूर है या नहीं, वास्तविक समस्या यह है कि रामू को किसने मारा। एक मगरमच्छ ने, सुब्रमण्यम ने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहा, तो फिर यह समस्या हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं रखती, इसका सीधा संबंध मछलियों के विभाग से है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कृपया आप मछलियों के विभाग में जाइए, उनका संबंध हर प्रकार की मछलियों से है जिनमें मगरमच्छ भी शामिल है। रंगाचारी ने सुब्रमण्यम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, वाह क्या बात निकाली है, क्यों ना हो भाई, इसलिए तो मैं अभी तक डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और तुम ज्वाइंट सेक्रेटरी हो। रंगाचारी ने ईर्ष्या और द्वेष के मिले जुले भाव से कहा। मैं चुपके से प्रार्थना पत्र हाथ में लिए बाहर निकल गया। आप सुन रहे हैं रेडियो।

अब गधा पहुंच गया मछलियों के विभाग में। वहां क्या होता है वो भी सुन लीजिए। मछलियों के विभाग में मछली मार्केट जैसा ही कोलाहल था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब तक मैं दफ्तरी कार्यवाही का काफी अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए मैंने पहले काउंटर की पहली खिड़की से शुरू किया। पहले क्लर्क ने कहा, मैं तो केवल मछलियों के अंडों की फाइलें लेता हूँ, आप आगे जाइए। दूसरे क्लर्क ने कहा, मेरे पास तो केवल मछलियों से संबंधित जानकारी की फाइलें हैं, वह भी केवल 3 प्रकार की मछलियों के संबंध में, रोहू, साइमन और पामफ्रेट। आपने क्या नाम बताया? रामू, मैंने धीमे से दोहराया। क्लर्क ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है, आगे जाइए। तीसरे क्लर्क से मैंने छूटते ही कहा, एक मगरमच्छ है। तीसरा क्लर्क बोला, शार्क मछली के तेल के बारे में या जापानी ट्रॉलर को किराए पर लेने के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना आगे जाइए। चौथे क्लर्क तक पहुंचते पहुंचते मेरे क्रोध का पारा बहुत चढ़ चुका था। यहाँ एक बूढ़ा मरियल सा क्लर्क अपनी नाक की चोंच लटकाई एक बड़ा सा रजिस्टर खोली ऊंघ रहा था। मैंने कहा, सुनो। और भाई सुनना पड़ेगा, बात यह है कि धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क ने अपने कानों पर हाथ रखकर पूछा, आ? क्या कहते हो? मैंने चिल्लाकर कहा, एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आई और बोला, एक धोबी ने एक मछली को खा लिया है? तो क्या हुआ? बहुत से धोबी मछली खाते हैं, न खाए तो हमारा यह डिपार्टमेंट कैसे चले? मैंने कहा, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। वह बोला, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने मछली को खाया है? अच्छा अच्छा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? बहुत से मगरमच्छ मछलियां खाते हैं। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनो, मछली नहीं मगर

सच। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं पर जाइएगा नहीं, अभी बात बाकी है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। वह बोला, अच्छा एक मगरमच्छ। मैंने उसे समझाते हुए कहा, और एक धोबी, याद रखो एक धोबी एक मगरमच्छ। वह बोला, एक धोबी एक मगरमच्छ, आगे चलो। मैंने कहा, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था। वह बोला, अच्छे कपड़े धोता था। मैंने चिल्लाकर कहा, अच्छे धोता था या बुरे धोता था, तुम्हें इससे क्या? वह बोला, मेरा धोबी बहुत बुरे कपड़े धोता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे धोबी को। मैंने सटपटाकर कहा, तुम पूरी बात नहीं सुनोगी। वह बोला, अच्छा सुनाओ। एक धोबी एक मगरमच्छ, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था, फिर। मैंने कहा, इतने में एक मगरमच्छ आया, उसने धोबी की टांग पकड़ी। क्या पकड़ी? जरा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ। वह बोला, टांग टांग। मैंने चिल्लाकर कहा, मुर्गी की? क्लर्क खुशी से चिल्लाया, मुर्गी की नहीं, धोबी की टांग। धोबी की टांग मैंने कभी नहीं खाई, बूढ़े क्लर्क ने दुख प्रकट करते हुए कहा। कैसी होती है? मैंने बिल्कुल झल्ला कर कहा, मैंने धोबी की टांग नहीं खाई, मगर मच आया जब बेचारा धोबी कपड़े धो रहा था, वह पकड़कर खा गया, समझे? हाँ हाँ अब समझ गया, क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा। धोबी कपड़े धोता था, इतने में एक मगरमच्छ आया और धोबी के कपड़े खा गया। मैंने उसकी ओर बड़े क्रोध से देखा और अगली खिड़की की ओर बढ़ गया। यहाँ पर एक अधेड़ आयु का एंग्लो इंडियन अपने गंजे सिर पर नीली नाड़ियों का उभरा हुआ जाल लपेटे बैठा था। उसकी नाक से मालूम होता था कि समय भी थोड़ी सी पिए हुए है। बड़ी शिष्टता पूर्वक मुझे मिला, कहने लगा, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेलो हाय, नमस्कार, वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गति की आत्मकथा। तो आगे बढ़ते हैं। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने दिल में सोचा, कहीं यह भी बूढ़े क्लर्क की तरह गड़बड़ा न जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पूरा वृतांत सुनाऊंगा। मैंने कहा, सुनिए, एक मगरमच्छ है। एंग्लो इंडियन महोदय की आंखें चमक उठी। बोला, हाँ, किधर है? मैंने कहा, यमुना घाट पर। वह बोला, यमुना पर तो बहुत से घाट है, मगर कहाँ है? एंग्लो इंडियन महोदय सब कुछ नोट करता जाता था। मैंने सोचा, अब मुझे अपने मतलब का व्यक्ति मिल गया। मन ही मन मैंने भगवान के गुण गाए। मैंने कहा, कृष्ण नगर के पास रेल के पुल के नीचे। एंग्लो इंडियन ने नोट करते हुए पूछा, कितना लंबा चौड़ा है? क्या घाट? घाट नहीं, मगरमच्छ, एंग्लो इंडियन ने बोला। मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं, मगर लोग कहते हैं 30 फुट से कम नहीं था। हैं? एंग्लो इंडियन की आंखें चमक उठी। अब तो उसके गाल भी चमक रहे थे। 30 फुट? वाह वाह, क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो? हाँ, ले जा सकता हूँ, हम साथ में अपनी राइफल ले चलेंगे, वह प्रोग्राम बनाते हुए बोला। राइफल किस लिए? मगरमच्छ के शिकार के लिए। एंग्लो इंडियन मेरी ओर आश्चर्य से देख कर बोला, तुम मगरमच्छ के शिकार के लिए आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, बात यह है कि उस मगरमच्छ ने एक धोबी को खा लिया है। उसके बीबी बच्चों की सहायता के लिए मैं यहाँ। ओ, एंग्लो इंडियन का दिल बुझ गया, उसकी आंखों की चमक भी बुझ गई। बिल्कुल कारोबारी और दफ्तरी स्वर में बोला, मैं मगरमच्छ का शिकार तो कर सकता हूँ, मगर रामू के लिए कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हमारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं। मैंने बिल्कुल तंग आकर कहा, तुम्हें कहाँ जाऊँ? तुम्हारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं तो किसी दूसरे विभाग का मगरमच्छों से कोई संबंध नहीं तो फिर उसका संबंध किससे है? यह कैसे पता चल सकता है? आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, आरजे अंजलि के साथ जुड़े रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

इंडियन ने बड़े ध्यान से और सहानुभूति से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मरने वाले की संबंधी हो? नहीं, मैं तो बस उसका गधा हूँ। फिर भी इतनी सहानुभूति जताती हो? एंग्लो इंडियन मेरी ओर चौंकन ना होकर देखने लगा। देखो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। आजकल के जमाने में किसी के प्रति इतनी सहानुभूति रखना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे यह मशवरा न दो, यह बताओ कि मेरी यह प्रार्थना कौन सुनेगा। एंग्लो इंडियन सोच में पड़ गया और पेंसिल चबाने लगा। पेंसिल चबाते चबाते बोला, मामला मगरमच्छ का है। मगरमच्छ का अदालत से कोई संबंध नहीं, वरना तुम इस कत्ल के सिलसिले में अदालत में जा सकते थे। मगरमच्छ का संबंध चिड़ियाघर से अवश्य है। तुम चिड़ियाघर जा सकते हो, मगर चिड़ियाघर वाले क्या करेंगे? उनके यहाँ पहले से मगरमच्छ मौजूद है। फिर चिड़ियाघर वालों का धोबी से क्या संबंध, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवर कपड़े तो पहनते नहीं। हाँ, एकाएक वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। अब के मैंने उसके चेहरे पर वही प्रफुल्लता देखी जो कुछ समय पूर्व मैं रंगाचारी और सुब्रमण्यम के चेहरे पर देख आया था। वह बोला, एक तरकीब समझ में आई है। क्या? सुनो, धोबी का संबंध साबुन से है और साबुन के आयात निर्यात का संबंध कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। फिर धोबी का संबंध कपड़ों से है और कपड़ों का संबंध फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। देखो, तुम सीधे कॉमर्स मिनिस्टर के पास चले जाओ, उसके सामने रामू धोबी की पूरी विपदा रख दो। अगर वह चाहता होगा कि धोबी कपड़े धो धो कर फाड़ते रहे और इस प्रकार लोग नए नए कपड़े पहनने पर विवश होते रहे, तो वह इस संबंध में अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। आप सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा। इसके आगे की बात हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोतो, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

0: ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
1: जी,
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
1: जी,
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गाँव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपौध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपौध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहाँ हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता है। तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा

0: ट्रेन भी देखी। वहां रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
0: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
0: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
0: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर है।
0: सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है।
1: बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
0: ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, आप कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
0: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
0: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता हूँ। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहाँ हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं। वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। हाँ, पसीने आ गए, चारों टांगे दुखाई। ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
1: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
0: लेकिन मित्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
1: मैं क्योटो देखूंगा
0: और मैं ओसाका।
1: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से
0: चलो।
1: समलकर, समलकर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
1: बचे।
2: यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है। अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र,

0: का क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
1: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ चलो।
2: ठीक क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
3: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: ये अब चलते हैं एक और यात्रा में, कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलंग? आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।

0: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी इस पुड़िया में क्या है?
1: नमक, लाहौरी नमक।
0: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
1: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ, क्यों भाई नमक नहीं ले जा सकती क्या?
0: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
1: है?
0: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
0: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है, और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीवी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
0: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक? अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत की नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: अब आपसे कौन बहस करे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए, इधर आइए।

0: इधर आइए ये जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, यहीं से बात करते हैं। सुनिए
0: जी, फरमाइए।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
0: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
0: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
0: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गए।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: ठीक है,
2: ठीक है जी,
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो? माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको का बात बताऊं, हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो,

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: આજે ભારતના ગામે ગામમાં ઘરની છતોનો નજારો બદલાઈ ગયો છે, જ્યાં પહેલા અગાશી

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शहर अवाज इतले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहरनी पोतानी ओळख आ शहरनी पोतानुं टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञानना प्रचार प्रसारना तमाम कार्यक्रम साथे समुदायनी तमाम अवाजने वाचा आपतुं एकमात्र प्लेटफॉर्म એટલે 90.4 FM કોમ્યુનિટી રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો પાલનપુર સાંભળતા રહો મસ્ત રહો ખુશ રહો 90.4 FM

अक्का पालन पुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे समळदू रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतू रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छीए कि कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले कि कोई नो साथ अथवा टेको

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

स्टेशन आव्यू ना आव्यू ते भी तो बंग्या भाग्या, कहे काले वाली माँ का दर्शन करेंगे। मैं कह्यू मारा पण प्रणाम कहजो तमारा देवी ने। ओ तो नी बोले हे, तेमणे जवाब आप्यो। आटला टूंका वाक्यमां मारे समझी लेवानुं हतुं कि काले वाली माँ का तो मौन पाड़े छे, कां तो बीजी आदिवासी कोमना

0: I'm sorry.
1: अल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं बेटा, उनको भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना। छोटा तो देखो कितना छोटा है,

अक्का पालन पुरी नी ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामल दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, दिस इज़ आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर 90.4 FM। हम सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पी क्यू रंगाचारी तमिलनाडु का रहने वाला था। संस्कृत बनारसी पंडितों की तरह बोलता था और अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों जैसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के जोशीले भाषणकर्ताओं सी और उर्दू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी। वह 10 भाषाएं जानता था और 10 और सीख रहा था। उसने अपना जीवन एक साधारण क्लर्क के रूप में शुरू किया था। आज वह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर विराजमान था। प्रत्येक मामले में मेन मेक निकालने में वह ऐसा सिद्धहस्त था कि उसके शासनकाल में हर फाइल 10 वर्ष तक विभिन्न दफ्तरों और मेज़ों के चक्कर लगाती थी और जब तक उसकी तरक्की न हो जाए फाइल भी आगे तरक्की नहीं कर सकती थी। अपने इसी कानूनी मीन मेक के कारण वह डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा था और अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के स्वप्न देख रहा था। हो जाएगा, पी क्यू रंगाचारी जैसे व्यक्ति कभी नहीं रुक सकते। उनके दफ्तर की सारी फाइलें रुक जाए लेकिन वे स्वयं कभी नहीं रुक सकते। पी क्यू रंगाचारी ने बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ा। कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिखता रहा। आखिर जब सब सुन चुका था तो उसने अपने मित्र ज्वाइंट सेक्रेटरी YZ सुब्रमण्यम को बुलाया, जो उसी की तरह तमिलनाडु का रहने वाला था और 25 भाषाओं, 10 पूंजीपतियों और 2 मंत्रियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पी क्यू रंगाचारी ने कहा, वाइजर सुनो, यह बड़ी कठिन समस्या है। क्या? वाइजर सुब्रमण्यम मेरी ओर बढ़ी, ध्यान से देखते हुए बोला, एक धोबी मर गया है और यह उसका गधा हमसे हर्जाना मांगता है। फिर रंगाचारी बोला, कानून की दृष्टि से एक गधा किसी विभाग में प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता और हम उसके प्रार्थना पत्र का कोई नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि गधा इंसान नहीं है और अदालत इंसानों की बात सुनती है, गधों की नहीं। मैंने कहा, बात मेरी घास की नहीं है, आपकी बुद्धि की है। रामू की बीबी और बच्चे भूखे हैं। क्यों? अगर सरकार उस धोबी गार्ड की ठीक तरह से रक्षा करती तो आज वह यूं ना मरता। वाइजर सुब्रमण्यम ने कहा, हाँ पी क्यू, इस बात पर विचार करो। यूं सोचो कि यह प्रार्थना पत्र जिस पर रामू की बीबी का अंगूठा लगवाया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। फिर? पी क्यू बोला, फिर दूसरी बात पर विचार करो। मान लिया कि एक गधा एक धोबी के कुटुंब का सरपरस्त बन सकता है। हमने बड़े बड़े कुटुंबों में इनसे बड़े गधों को सरपरस्त बनते देखा है। यह तो मुझे पढ़ा लिखा गधा मालूम होता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं। वाइजेड सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर रहिए। एक ब्रेक के बाद हम यहीं पर मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM। क्या रामू धोबी मजदूर था? कदापि नहीं, वाइजर सुब्रमण्यम ने सिर हिलाकर कहा। मैंने कहा, धोबी अगर मजदूर नहीं तो क्या है? बेचारा सुबह से शाम तक 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम करता है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेबर एक्ट की धारा 51 के अनुसार मजदूर वह है जो किसी कारखाने में काम करे। क्या तुम धोबी गार्ड को कारखाना कह सकते हो सुब्रमण्यम? कदापि नहीं रंगाचारी, यह धोबी तो मजदूर हो ही नहीं सकता, इसलिए न इसे हर्जाना मिल सकता है, न प्रोविडेंट फंड, न सहायता स्वरूप कुछ रुपया किसी खाते में से दिया जा सकता है, न कोई मुकदमा खड़ा हो सकता है। तो फिर? रंगाचारी सुब्रमण्यम का मुंह देखने लगा और सुब्रमण्यम रंगाचारी का, और मैं उन दोनों का। एकाएक उन दोनों के मन में एक ही विचार आया और वे प्रसन्नतावश उछल पड़े। मैं भी प्रसन्नता से उछल पड़ा कि अब बेचारे रामू धोबी की फैमिली का कुछ भला हो जाएगा। मगर एक बात विचार करने की है, रंगाचारी बोला, अगर यह धोबी मजदूर नहीं तो फिर कौन है? इसकी कानूनी हैसियत स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो धोबी प्रतिदिन घाट पर मरते रहेंगे और हमारे लिए विपत्ति खड़ी करते रहेंगे। सुब्रमण्यम बोला, मेरे विचार से इस गधे का प्रार्थना पत्र लेकर एक फाइल चला देनी चाहिए। रंगाचारी ने मेरे हाथ से प्रार्थना पत्र ले लिया।

मैंने उसके दोनों हाथ अपने दोनों कानों में लेकर कहा, धन्यवाद रंगाचारी महोदय, हजार बार लाख बार धन्यवाद। आपने एक गरीब धोबी के बीबी बच्चों को मरने से बचा लिया। मैं इस प्रार्थना पत्र का फैसला सुनने का पाऊँ? रंगाचारी ने सुब्रमण्यम की ओर देखा, सुब्रमण्यम ने रंगाचारी की ओर देखा। आखिर रंगाचारी बोला, फाइल तो आज ही चलनी शुरू हो जाएगी, तीसरे दर्जे के क्लर्क से पहले पहले दर्जे के क्लर्क तक जाएगी, फिर हर मेज पर इसकी नोटिंग होगी, फर्स्ट क्लर्क से डिप्यूटी सुप्रीडेंट तक और डिप्यूटी सुप्रीडेंट से सुप्रीडेंट तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय देगा। यह राय चलते चलते मेजों पर से गुजरती हुई मेरे पास आएगी। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से फर्स्ट सेक्रेटरी के पास, फर्स्ट सेक्रेटरी से उसे डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा। मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या समस्या है, लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ आरजी अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

मगर समस्या बड़ी टेढ़ी है। प्रश्न रामू धोबी के मर जाने का इतना नहीं है, प्रश्न यह है कि धोबी मजदूर हो सकता है या नहीं। संभव है इस संबंध में कॉमर्स मिनिस्ट्री से निर्णय कराने की आवश्यकता पड़े। फिर यह प्रश्न भी है कि अगर धोबी मजदूर है तो मोची मजदूर क्यों नहीं, कुम्हार मजदूर क्यों नहीं। अगर रामू को हर्जाना मिलेगा तो दूसरे भी मांगेंगे। लाखों करोड़ों के लिए स्टेट बैंक कहाँ से हर्जाना लाएगा, इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा। संभव है फिनांस डिपार्टमेंट इस मूल प्रश्न को प्रधानमंत्री के सामने रखे और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस प्रश्न को रखे। संभव है इसी प्रश्न पर हमारे विधान की किसी धारा में कोई परिवर्तन भी हो जाए। रंगाचारी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए मुझसे कहा, मेरे विचार में अगर तुम 10 साल के बाद आओ तो उस समय तक इस फाइल का कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। तब तक रामू के बीबी बच्चे क्या करे। रंगाचारी ने कहा, हम विवश है, कानून के हाथों बिल्कुल विवश है। यो हमारी पूरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। सुब्रमण्यम बोला, मैं समझता हूँ रंगाचारी, समस्या वास्तव में यह नहीं है कि धोबी मजदूर है या नहीं, वास्तविक समस्या यह है कि रामू को किसने मारा। एक मगरमच्छ ने, सुब्रमण्यम ने प्रसन्नता से चिल्लाकर कहा, तो फिर यह समस्या हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं रखती, इसका सीधा संबंध मछलियों के विभाग से है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कृपया आप मछलियों के विभाग में जाइए, उनका संबंध हर प्रकार की मछलियों से है जिनमें मगरमच्छ भी शामिल है। रंगाचारी ने सुब्रमण्यम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, वाह क्या बात निकाली है, क्यों ना हो भाई, इसलिए तो मैं अभी तक डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और तुम ज्वाइंट सेक्रेटरी हो। रंगाचारी ने ईर्ष्या और द्वेष के मिले जुले भाव से कहा। मैं चुपके से प्रार्थना पत्र हाथ में लिए बाहर निकल गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो पालमपुर के साथ।

अब गधा पहुंच गया मछलियों के विभाग में। वहां क्या होता है वो भी सुन लीजिए। मछलियों के विभाग में मछली मार्केट जैसा ही कोलाहल था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब तक मैं दफ्तरी कार्यवाही का काफी अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए मैंने पहले काउंटर की पहली खिड़की से शुरू किया। पहले क्लर्क ने कहा, मैं तो केवल मछलियों के अंडों की फाइलें लेता हूँ, आप आगे जाइए। दूसरे क्लर्क ने कहा, मेरे पास तो केवल मछलियों से संबंधित जानकारी की फाइलें हैं, वह भी केवल तीन प्रकार की मछलियों के संबंध में, रोहू, साइमन और पामफ्रेट। आपने क्या नाम बताया? रामू, मैंने धीमे से दोहराया। क्लर्क ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है, आगे जाइए। तीसरे क्लर्क से मैंने छूटते ही कहा, एक मगरमच्छ है। तीसरा क्लर्क बोला, शार्क मछली के तेल के बारे में या जापानी ट्रॉलर को किराए पर लेने के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना आगे जाइए। चौथे क्लर्क तक पहुंचते पहुंचते मेरे क्रोध का पारा बहुत चढ़ चुका था। यहाँ एक बूढ़ा मरियल सा क्लर्क अपनी नाक की चोंच लटकाई एक बड़ा सा रजिस्टर खोली ऊंघ रहा था। मैंने कहा, सुनो। और भाई सुनना पड़ेगा, बात यह है कि धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क ने अपने कानों पर हाथ रखकर पूछा, आ? क्या कहते हो? मैंने चिल्लाकर कहा, एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है।

बूढ़े क्लर्क के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आई और बोला, एक धोबी ने एक मछली को खा लिया है। तो क्या हुआ? कौन से धोबी मछली खाते हैं? न खाए तो हमारा यह डिपार्टमेंट कैसे चले? मैंने कहा, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। वह बोला, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने मछली को खाया है। अच्छा अच्छा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? बहुत से मगरमच्छ मछलियां खाते हैं। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनो, मछली नहीं मगरमच्छ। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं पर जाइएगा नहीं, अभी बात बाकी है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। वह बोला,
1: अच्छा एक मगरमच्छ।
0: मैंने उसे समझाते हुए कहा,
1: और एक धोबी, याद रखो एक धोबी एक मगरमच्छ।
0: वह बोला,
1: एक धोबी एक मगरमच्छ, आगे चलो।
0: मैंने कहा,
1: वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था।
0: वह बोला,
1: अच्छे कपड़े धोता था।
0: मैंने चिल्लाकर कहा,
1: अच्छे धोता था या बुरे धोता था, तुम्हें इससे क्या?
0: वह बोला,
1: मेरा धोबी बहुत बुरे कपड़े धोता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे धोबी को।
0: मैंने सट पटाकर कहा,
1: तुम पूरी बात नहीं सुनोगी।
0: वह बोला,
1: अच्छा सुनाओ। एक धोबी एक मगरमच्छ, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था, फिर।
0: मैंने कहा,
1: इतने में एक मगरमच्छ आया, उसने धोबी की टांग पकड़ी।
0: क्या पकड़ी?
1: जरा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ।
0: वह बोला,
1: टांग टांग।
0: मैंने चिल्लाकर कहा,
1: मुर्गी की?
0: क्लर्क खुशी से चिल्लाया,
1: मुर्गी की नहीं धोबी की टांग।
0: धोबी की टांग मैंने कभी नहीं खाई, बूढ़े क्लर्क ने दुख प्रकट करते हुए कहा।
1: कैसी होती है?
0: मैंने बिल्कुल झल्ला कर कहा,
1: मैंने धोबी की टांग नहीं खाई, मगर मच्छ आया जब बेचारा धोबी कपड़े धो रहा था, वो पकड़कर खा गया, समझे?
0: हाँ हाँ अब समझ गया, क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा। धोबी कपड़े धोता था, इतने में एक मगरमच्छ आया और धोबी के कपड़े खा गया।
1: मैंने उसकी ओर बड़े क्रोध से देखा और अगली खिड़की की ओर बढ़ गया।
0: यहाँ पर एक अधेड़ आयु का एंग्लो इंडियन अपने गंजे सिर पर नीली नाड़ियों का उभरा हुआ जाल लपेटे बैठा था। उसकी नाक से मालूम होता था कि समय भी थोड़ी सी पिए हुए है। बड़ी शिष्टता पूर्वक मुझे मिला, कहने लगा, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा।
0: कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ एक गति की आत्मकथा। तो आगे बढ़ते हैं। फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कहीं यह भी बूढ़े क्लर्क की तरह गड़बड़ा न जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पूरा वृतांत सुनाऊंगा। मैंने कहा, सुनिए एक मगरमच्छ है। एंग्लो इंडियन महोदय की आंखें चमक उठी। बोला, हाँ किधर है? मैंने कहा, यमुना घाट पर। वह बोला, यमुना पर तो बहुत से घाट है मगर कहाँ है? एंग्लो इंडियन महोदय सब कुछ नोट करता जाता था। मैंने सोचा अब मुझे अपने मतलब का व्यक्ति मिल गया। मन ही मन मैंने भगवान के गुण गाए। मैंने कहा, कृष्णनगर के पास रेल के पुल के नीचे। एंग्लो इंडियन ने नोट करते हुए पूछा, कितना लंबा चौड़ा है? क्या घाट? घाट नहीं मगरमच्छ, एंग्लो इंडियन ने बोला। मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं मगर लोग कहते हैं 30 फुट से कम नहीं था। हैं? एंग्लो इंडियन की आंखें चमक उठी। अब तो उसके गाल भी चमक रहे थे। 30 फुट? वाह वाह, क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो? हाँ ले जा सकता हूँ, हम साथ में अपनी राइफल ले चलेंगे, वह प्रोग्राम बनाते हुए बोला। राइफल किस लिए? मगरमच्छ के शिकार के लिए। एंग्लो इंडियन मेरी ओर आश्चर्य से देख कर बोला, तुम मगरमच्छ के शिकार के लिए आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, बात यह है कि उस मगरमच्छ ने एक धोबी को खा लिया है। उसके बीबी बच्चों की सहायता के लिए मैं यहाँ। ओ, एंग्लो इंडियन का दिल बुझ गया, उसकी आंखों की चमक भी बुझ गई। बिल्कुल कारोबारी और दफ्तरी स्वर में बोला, मैं मगरमच्छ का शिकार तो कर सकता हूँ मगर रामू के लिए कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हमारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं। मैंने बिल्कुल तंग आकर कहा, तुम्हें कहाँ जाऊँ? तुम्हारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं तो किसी दूसरे विभाग का मगरमच्छों से कोई संबंध नहीं तो फिर उसका संबंध किससे है? यह कैसे पता चल सकता है? आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गति की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, आरजे अंजलि के साथ जुड़े रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एंग्लो इंडियन ने बड़े ध्यान से और सहानुभूति से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मरने वाले की संबंधी हो? नहीं, मैं तो बस उसका गधा हूँ, फिर भी इतनी सहानुभूति जताते हो? एंग्लो इंडियन मेरी ओर चौंकन्ना होकर देखने लगा। देखो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। आजकल के जमाने में किसी के प्रति इतनी सहानुभूति रखना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे यह मशवरा न दो, यह बताओ कि मेरी यह प्रार्थना कौन सुनेगा? एंग्लो इंडियन सोच में पड़ गया और पेंसिल चबाने लगा। पेंसिल चबाते चबाते बोला, मामला मगरमच्छ का है। मगरमच्छ का अदालत से कोई संबंध नहीं, वरना तुम इस कत्ल के सिलसिले में अदालत में जा सकते थे। मगरमच्छ का संबंध चिड़ियाघर से अवश्य है, तुम चिड़ियाघर जा सकते हो, मगर चिड़ियाघर वाले क्या करेंगे? उनके यहाँ पहले से मगरमच्छ मौजूद है। फिर चिड़ियाघर वालों का धोबी से क्या संबंध, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवर कपड़े तो पहनते नहीं। हाँ, एकाएक वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। अब के मैंने उसके चेहरे पर वही प्रफुल्लता देखी जो कुछ समय पूर्व मैं रंगाचारी और सुब्रमण्यम के चेहरे पर देख आया था। वह बोला, एक तरकीब समझ में आई है। क्या? सुनो, धोबी का संबंध साबुन से है और साबुन के आयात निर्यात का संबंध कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। फिर धोबी का संबंध कपड़ों से है और कपड़ों का संबंध फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। देखो, तुम सीधे कॉमर्स मिनिस्टर के पास चले जाओ, उसके सामने रामू धोबी की पूरी विपदा रख दो। अगर वह चाहता होगा कि धोबी कपड़े धो धो कर फाड़ते रहे और इस प्रकार लोग नए नए कपड़े पहनने पर विवश होते रहे, तो वह इस संबंध में अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। आप सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा। इसके आगे की बात हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।